पंच को झगड़ा झगड़त जन्म गवाया, संसार वल निगाह मार के वेखिए, बस इना पंजा झगड़िया विच ही मनुख सवेर तो शाम तक और रात तो सवेर तक इना ही झगड़िया विच पिया होया। इसनू परमेश्वर दा सिमरन भोली गया। इसे लई गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे हन, अब मैं कौन उपाओ करूं, जे बिद मन को संसा चूके पवनिद पार परों, जन्म पाए किश पलो ना कीनो ताते अधिक डरो। इसलिए कबीर जी कहिंदे हन, भाई सुख तो उन्हां ही पाया है जिन्हां ने जपिया श्री वाहिगुरु। तो इसलिए झूठी माया सब जग बांधिया, झूठी माया ने तो सारे जग नू बनिया, पर रब दे प्यारे अमृत वेले जाग के नाम जपदे हन, सेवा सिमरन करदे हन, अपना जीवन सफल करदे हन। सेजे रमत नैन नहीं पेखो, ए दुख कांस्यों कहोरे, मेरी मत बौरी मैं राम बिसारियो, किन बिद रहन रहोरे, बाप साब का करे लड़ाई।

गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी इस शब्द विच बख्शिश कर रहे हैं ऐ मनुख बिना सिमरन दे होर जितने भी कर्म कांड हैं दुनिया दे कर्म हैं उन दान जप तप इना नू फल नहीं लगन वाले कहो नानक एह तत बिचारा जपा सिर जप की है प्रभु सिमरन है तपा सिर तप की है आख्या प्रभु दा सिमरन है कर्मन सिर कर्म केड़ा कर्म है हर को नाम जप निर्मल कर्म प्रभु सिमरन तो बिना तेरा छुटकारा नहीं हो प्रभु सिमरन तो बिना जितने भी होर तेरे कर्म हन ओ जीरो हन ते जीरो जितनिया मर्जी है लाई जाइए उना दी कोई कीमत नहीं होंदी जदों तू नाम दा एका लावेगा ता ओ जीरो दस बोलेगी सौ बोलेगी हजार बोलेगी फिर तेरी मेहनत है जितना सिमरन करी जावेगा तेरे पुन वध दे जानगे तेरा जीवन उच्चा सुच्चा होंदा जाएगा इसलिए गुरु अर्जुन देव महाराज कहंदे ने मैं सारिया धर्मां दा तत तुहानू दस रहा जितने भी इस धरती ते धर्म शास्त्र हन उना दा तत मैं तुहानू दस रहा हां कि बिना सिमरन दे बिना भगवान दे भजन दे छुटकारा नहीं हो सकता इसलिए कहो नानक ए तत विचारा।

तक किया कि एक गरीब आदमी जिदे चेहरे पे बड़ा जलाल है, बड़ा खुश लगता है। मन विच सोचिया कि वाहिगुरु ने राज भाग दुनिया दे सुख दिते हन, मेरे अंदर एडी खुशी नहीं जितनी इदे मस्तक तो प्रतीत हो रही है। राजा पुछन लगा इसनू, क्यों भाई तू केड़ी खुराक खांदा है, कितने कुदा काम कर लेना है। ता ए गरीब आदमी कहने लगा, मैं अठाने दी मजूरी करदा रहो, अठाने नाल गुजारा हो जांदा, महाराज बड़ा वधिया हुंदा है। दो आने मैं अपना उधार भी लहांदा हां, दो आने उधार देंदा भी हां, दो आने जमा भी करदा हां, ते दो आनिया दे नाल बड़े आनंद नाल रहिंदा, कोई कमी है ही नहीं। राजा हैरान हो गया, एडा खुश दो आनिया दे नाल, ते उधार किथे लहाना है भाई तू किनू देना है। आख्या मेरे माता पिता घर हैं, उन्होंने मैनू पालिया पोसिया है, मैं उन्हों का करजाई हाँ, इसलिए दो आने उन्हों की सेवा विच रोज लाना, ते उधार देंदा किनू है, अखे मैं अपने बच्चियां नू पढ़ा रहा, अच्छी तलीम दिवा रहा, अच्छे पैरन वास्ते बस्तर देना, इसलिए ये दो आने उधार देंदा हां, जदों मैं बुढ़ा हो जावांगा ये मैनू मोड़नगे, मेरी सेवा करनगे। उचारण करो श्री आख्या, ते बाकी पैसे अखे दो आने मैं जमा करदा, कोई भी संत महात्मा महापुरख आउंदा है बेनती करके उन्हों घर ले आना, भोजन कराना, ये मेरे दरगाह विच जमा ने, ते दो आनिया दे नाल आनंद नाल प्रसादे शकी देने, बड़ी कृपा है ईश्वर की। महापुरखां दी संगत मिलन करके मैनू संतोख आ गया है, मैं तृष्णा तो रहत हो गया। महापुरखां ने मैनू दस्या कि बिना सिमरन दे कोई होर सुख नहीं है, इसलिए मैं अमृत वेले उठ के इशनान करके सतसंगत विच बह के जपदा हां श्री, सेवा भी करदा हां, ते नाल नाल सिमरन भी करदा।

राग गौड़ी दीप की विच ऋषभ कोमल मध्यम तीवर अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस ते आरोह विच ऋषभ सुर वर्जित है। इस दी जाति शाड़व संपूर्ण वादी षड़ज संवादी पंचम अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच तुम गाव हो मेरे निर्भौ का सोहिला शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

रामकली बड़ा पुरातन अते प्रसिद्ध राग है। सवेर समय दे रागां विच इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक करुणा का राग है, पहला मूर्छना करता है, फिर करुणा रस नाल भरपूर कर देता है। रामकली जोगियां का प्यारा राग है। गुरु महाराज जी ने रामकली राम मन वसिया ता बनिया सिगार, गुर के शब्द कमल विगसिया ता सौंपिया भगत भंडार लिख के इस राग का मजमून स्पष्ट कर देता है। सिद्ध गोष्ठ रामकली सद अनंत साहब दी बाणियां इस राग विच हन। ओंकार दी बाणी विच जो दक्षिणी तर्ज ते है, प्रभु दे करता पुरख होण दा विश्वास दृढ़ करवाया है। आनंद दी प्राप्ति लई आनंद साहब विच अध्यात्मक धार्मिक अते मनोविज्ञानिक उपदेश दिते हन। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच ऋषभ अते ध्यावत कोमल दोनों मध्यम अते दोनों निषाद लगते हैं, बाकी स्वर शुद्ध हैं। इस राग दे आरोह विच ऋषभ स्वर का त्याग किया जाता है। इसके गाउण का समा दिन का पहला पहर है। रामकली राग विच जिन्हां दो शब्दों का कीर्तन सरवण करोगे वह हैं, पहला रामकली राम मन वसिया ता बनिया सिगार, गुर कै शब्द कमल विगसिया ता सौंपिया भगत भंडार। यह गुरु अमरदास पिता का उच्चारण किया शब्द है अते इसनु राग विच गा रहे हैं डॉक्टर गुरनाम सिंह जी। दूजा शब्द पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज का है। कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई, इसनु गा रहे हैं बीबी गीता कौर पेंटल जी। पहला शब्द सरवण करो, रामकली राम मन वसिया ता बनिया

ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं नाम रहो सब। माता जी चले गए, पिताजी चले गए, बाबा ही रहते। शस्त्र विद्या सखण लग पे, गुरबाणी की विद्या सखण लग पे। वेले बह के मैं रोटियां नहीं पाड़नी, होर भी कई कुछ

संगत दे झूठे कौले माई दे पे आज ये गुण ले जाना बाबा दीप सिंह हुण ते कौले माई जा बाबा ही कोले माई दे पे कोला हाथ चे नाल सिमर नाल कोला नाल सिमर नाल कोला इन्नी क लिव लग के कोला माई दे पे के गुरु गोबिंद सिंह जी नू 10 मिंट हो गए कोल खड़िया पिछे ते बाबा जी दा उधर लिव जदों सिंह नाल हुंदे सी गुरु गोबिंद सिंह बाबा जी जदों ध्यान वेख्या साहब खड़े ने ते कहंदे कौला हाथ विच ही ए सवा नाल लिबड़िया हाथ भी लिबड़े ने सवा दे ते डंडौत करके मालक नूं कहंदे जी भुल हो गई आप जी खड़े ते मेरा ध्यान ही नहीं कि आप कोल खड़े बख्श लेना गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसण ते दूजे सिंघां नूं होणा कहंदे वीर सिंह कोले माई दा ते बाबा जी तुहाडी कृपा नाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुहाडी कृपा नाल ते तन गुरु गोबिंद

शुद्ध के जितैया रंग भूम के पवैया पार भूम के मटैया नाथ तीन लोक गाइया कहु के तनैया है न मैया जाके पैया हूँ छोण हो के छुआ कोड जादो प्रीत लाइया साधना सदैया धूल तानी के पदैया तोर ताम के

पहला रूप साडा ए है जिहड़ा तिना गुणा तो परे है, रजो तमो सतो इन्हां तिना गुणों तो परे है। ये जिवें सारी बनस्पति दे अंदर अग है ना, किसे भी दरख्त नूं छांग के वेख लो, भावें वह अंब दा होवे, भावें किक्कर दा होवे, भावें दरख्त निम दा है, भावें टाली दा है, अग सारिआं दे अंदर है। झट ही सारिआं नूं अग फड़ लैगी क्योंकि बनस्पति दे अंदर अग है। ते सारे दुद्धां नूं इकट्ठियां कर लो, भावें वह घा दा दुद्ध होवे, भावें मझ दा होवे, गां दा होवे, बकरी दा होवे, किसे दा भी दुद्ध होवे, उस दे अंदर घिओ है। जिवें दुद्ध अंदर घिओ ते बनस्पति दे अंदर अग है। घट घट व्यापरिया परमात्मा वाहिगुरु सचे पातशाह जर्रे जर्रे अंदर जिहड़ा वसदा पिया है, एक रूप साडा ओ है। जिवें जल किसे घड़े दे अंदर पाया होवे ते जल जल दा रूप है, जल दे अंदर भी परमात्मा वस रिहा है। पहला रूप साडा तिना गुणा तो परे है, कोई उस गुण नूं जान नहीं सकदा, कोई उस नूं वेख नहीं सकदा। वेखण अंदर ते बड़ा कुछ नजर आ रहा है पर अनुभव दी अख नाल कोई नहीं वेख सकदा। इस करके इस गुण दी पहचान होनी मुश्किल है क्योंकि इस दे विच कोई रूप नहीं। ए चक्कर चिहन अर वर्ण जात अर पात नहन, जे रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकते। ए लंबा चल इस रूप नूं अखां नाल वेख सकदे हो, अनुभव नहीं कर सकदे।

मैं तेनु एक होर बात कहना, जिन्ने अखर ने ए मेरे रोम हन, शरीर दे जितने रोम ने ना, साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह ने किया, गुरु ग्रंथ साहब विच आए हुए अखर ए मेरे रोम ने, ते जे एक भी अखर उरा परां हो जाए समझो मेरा रोम टुट जाएगा, समझो रोमां दी बेदबी हो जाएगी। ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी पढ़न लगे, असी विचार नहीं करते कितनियां लगा मात्रा अगे पिछे हो जांदियां ने, किन्नी नरादरी हुंदी, कोई पवित्रता नहीं। मैले हथ जड़े हन गुरु ग्रंथ साहब के अंगां नूं ला दिंदे आ, समझो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह जी के पवित्र चेहरे नूं साडा मैला हथ लग। इस करके बड़ी पवित्रता दे नाल गुरु के सिखो, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं गुरु मानो। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं हाजिर गुरु मनोगे ते साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे दर्शन इसे विचों होणगे, दस पातशाहियां दे दर्शन होणगे। भाई नंद लाल जिन्हां लगा मात्रा ते अखर ने ए मेरे रोम ने बड़े पवित्र हिरदे नाल पढ़ने, बड़ी सोच विचार करके पढ़ने, किते अंगां दी बेदबी ना हो जाए, किते रोम जड़े हन टुट ना जान साहब सचे पातशाह महाराज दे। इस करके बड़े अदब नाल गुरु का सिख गुरु की बाणी पढ़े, गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेके हाजरा गुरु मन्ने। अगले वचन साहब सचे पातशाह जी ने कहे।

मत्था टेकिया, पांच पैसे श्री फल, गरीब नवाज ने परिक्रमा कीतिया, ते साहब सचे पातशाह महाराज आसन ते विराजमान हो गए। वेखद्या वेखद्या सिख बैराग अंदर ने, बैराग दा समा बनिया होया, ए विछोड़ा सहया ना जाए। भाई दया सिंह आए, चरण पकड़े साहब जी दे, ते चरण हाथ विच ना आए, ते वैराग दे अंदर आंसू गिर पए। महाराज ए कड़ा रूप है? भाई दया सिंह ए जड़ा तू वेखना, ए साडा वास्तव स्वरूप नहीं। वास्तव स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अंदर समा गया, इस करके साडे तैनू चरण नजर आ रहे ने, हाथ च नहीं आए तेरे च, गुरु ग्रंथ साहिब दे चरणी लग। उस तों बाद भाई दया सिंह जी ने उठ के मथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं टेकिया, सारी सिख संगत ने गुरु ग्रंथ साहिब नूं मथा टेकिया। वेखद्या वेखद्या साहिब जी ज्योति ज्योत समा गए। गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने ਇਹ ਵਾਕ ਕਹੇ ਸਨ ਸਰਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਈ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਗਿਆ।

अगली जो पंक्ति है ना बहुत जरूरी है। एक गुरसिख के कर्तव्य लई है, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजय व्रत घोर मड़ी मट भूल न माने। आओ सारे पढ़िए जी।

साहब बाणी विच बख्शिश करे हन रे मन तेरों को नहीं रात दिन जिना लई तू मजूरियां करदा फिर देन जिना बाल बच्चियां लई परिवार लई तू रात दिन पजिया फिर देन याद रख अंत वेले तेरी किसे भी सहायता नहीं करनी जितना मर्जी है कोई पार खिंच लवे घर दा बाहर दा जितनिया मर्जी हन तू जिम्मेवारी दियां पंडा अपने सिर ते रख लै जितना मर्जी है तू ए खेचलां दा पार खिंच लै किसे लई कितना भी तू कुछ कर लवे पर याद रखी अंत वेले तेरी किसे भी सहायता नहीं करनी अंत वेले केवल जपया होया नाम और कीती हुई सेवा ही तेरे संग होवेगी तेरे नाल होवेगी रे मन तेरो को नहीं खिंच ले जिन पार अख्या बिरख बसेरो पंख को तैसो ए संसार जितना था थां तो कठे होके एक ब्रिश्ते आके पंछी कठे हो जांदे हन ए बिरख बसेरो पंख को तैसो ए संसार भी ऐसा ही है आख्या राम रस पिया रे इना विचो भाई जिना ने नाम दा रस पीता है प्रभु दी भगती कीती है अमृत वेले उठ के इशनान करके नित नेम विच जो जुड़दा है आख्या उना कुल पुष्के तां वेख ओ आनंद ओ रस ओ उना दा स्वादला जीवन उना कोलो पुछ के वेख कितनिया खुशियां मानदे हन जो परमेश्वर दी भक्ति करदे हन राम रस पिया रे जिना ने नाम दा रस पी लिया फिर राम रस पिया रे जह रस बिसर गए रस और फिर उना नू दुनिया दे रस बिसर गए हन उना नू सोझी पै गई है के जगत दी प्रीत ए मतबली प्रीत है कच्ची प्रीत है मनुख सारी उम्र जिना लई करदा रहिंदा ना जदों पंज भूतक शरीर विचों प्राण पंखेरू उड़ जांदे हन तां फिर इस शरीर नू शमशान भूमिका ले जाके अग्न पेट कर दिता जांदा बस संबंधियां दी अपनियां दी बस इतनी कोई सांझ है जदों तेरी इस पंज भूतक देही नू अगन पेट कीता ते सारे संबंध तेरे टूट गए मृतक पए दसे बंद छूटे ते नाल केड़ी वस्तु गई आख्या जै मात पिता सुत मीत न भाई मन उहां नाम तेरे संग सहाई जै महापयान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरे चलै जै मुश्किल होवे अत पारी हर को नाम खिन माए उधारी भई नाल ता नाम ही जांदा है ते हटड़े बाजार सौदा करन मन जा रिया ए संसार एक त्रे हटड़ा बाजार है बाजारा विच बाजार है ते वनजारा ए जीव सौदा करन ली आया आख्या भई आउना उना दा ही सफल होवेगा सच वखर जिनी लद्या से सचड़े पासार ओ सच्चे व्यापारी हन जिना ने संसार ते आके नाम दा वणज कीता है करनी कमाई कीती है अपना जीवन स्वच्छ कीता है नाम जप जप के सेवा करके ए

आख्या क्यों महल माड़िया दे मगर लग्या, ये कोई नाल नहीं ले जा सकिया। बड़ी गल है जदों तू पंज भूतक शरीर त्यागेगा ता कोई दो गज कपड़ा तेरे ते पा देवेगा, बस इस तों वध होर कुछ नहीं। क्योंकि कौडी कौडी जोड़े जोड़े लाख करोड़, चलती बार ना कुछ मिलियो ले लंगोटी तोड़। अगे शाहूकार जदों लंगोटी बंदे सन ना ते लक विच सोने दी जंजीर पा के रखदे सन, ते कबीर जी वेख रहे सन एक बड़ा सेठ जदों मरिया इसदा शरीर अगन पेट करन लगे ते घर वालिया ने ओ लंगोटी भी तोड़ ली। ए सोने दी चैनी भाई किधर लै चलिया, इसलिए आख्या तेरे नाल कुछ नहीं जाना, ये सब इथे रह जाएगा, नाम दा धन तेरे नाल जावेगा। कबीर कोठे मंडप हेत कर काहे मरे सवार, कारज साढ़े तीन हथ कनी तो पौने चार, बस इतनी कोई तेरी होगा।

इतना खलेरा भी ना खलेर संसार विच के तेरा ध्यान विच ही रवे। तेरी आत्मा ने गुरु नानक दे चरणा विच जा विराजना सी, पर तू पदार्था विच अपना मन रखेगा ता फिर पदार्था विच भाई कोई कीड़ा ही आके बनेगा। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जो परे, ऐसी चिंता में जो मरे सरप जून वल वल होता। इसलिए इतना को इकट्ठा कर जितनी तेरी बिरती ना बिगड़े, तेरा नितनेम दा समा एवे ना चला जावे, क्योंकि कुछ नाल भी ले जाना है तू ते नाल परमेश्वर दा नाम जाना। इसलिए असी 24,000 श्वास रोज दे लैंदे हां, इना विच्चों श्वासा दा दसवंध जो 2.5 घंटे समा बनदा है, ओह असी गुरु दे लेखे, ए गुरु का कर्ज है साडे सिर ते, ए तां असी उतारना ही उतारना। आख्या जे इस तो वध समा कढेगा तां गुरु नानक दे बैंक विच ए समा तेरा जमा है, जदों मर्जी है भाई ए सहायता तू प्राप्त कर सकना। इसलिए इना श्वासा नू जप जप के भाई सफल करना। अगे पुछया जाना है कितने को श्वास भाई जप जप के सफल कीते। आ बैंक विच्चों लोन लईदा ना उदा विहाज देना पैंदा है, ते असी भी श्वासा रूपी लोन लैके आए हां, ते श्वासा दा विहाज देना ही पेगा, जे नहीं देवांगे तो फिर पकड़े जावांगे। फिर हजूर कहंदे हन आपीने भोग भोग के होए बसमर पौर सिधाया, वड्डा होआ दुनीदार गल संगल घट चलाया। क्योंकि मनुख जितनिया भी सियाणपां करदा संसार